0: ज्यानै नभए के धन के मान।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन और विकास कला जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।